तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। कोशिश करिए कि बिना बात के कोई नाराज ना हो, कोशिश करिए कि बिना बात के कोई नाराज ना हो, रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हो। हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, पर कभी आप नाराज हों तो उसे भी इस बात का एहसास जरूर हो। 5:36, 34 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

चल रहा हो जहां परिचय मूर्खता का, वहां शांत रहना ही बेहतर है। चल रहा हो जहां परिचय मूर्खता का, वहां शांत रहना ही बेहतर है। सजी हो महफिल मूर्खों की, वहां से निकल जाना ही बेहतर है। मूर्खों की उस भीड़ में बुद्धिमत्ता कैसे दिखाओगे? मूर्खों की उस भीड़ में बुद्धिमत्ता कैसे दिखाओगे? घुसोगे जबरदस्ती वहां तो खुद भी मूर्ख कहलाओगे। 5:39 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चित के साथ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:45 हो चुके हैं। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुझे यानी अपने दोस्त अर्चित को।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रूपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।

0: वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवे चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. The President of Vietnam arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. He was received by Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government of Vietnam. A strong business delegation is also accompanying the visiting dignitary. This is President Tho Lam's first state visit to India after being elected as the President of Vietnam in April this year. A report.
2: President of Vietnam Tho Lam will be accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. He will pay tributes to Mahatma Gandhi at the Rajghat. After the talks between Prime Minister Narendra Modi and the President of Vietnam, several MOUs will be signed and exchanged. President Draupadi Murmu will have a meeting with her Vietnamese counterpart at Rashtrapati Bhavan this evening. Lok Sabha Speaker Om Birla will call on the visiting dignitary. Mr. Tho Lam will also deliver the 56th Sapru House lecture today, organized by Indian Council of World Affairs. India and Vietnam share historical and civilizational ties which have steadily deepened over the years. President Tho Lam's visit coincides with the special occasion of the two countries marking the 10th anniversary of the elevation of relations to a comprehensive strategic partnership agreed during the visit of Prime Minister Modi to Vietnam in 2016. The engagement between the leaders is expected to provide fresh momentum to the robust bilateral relations and open new avenues for cooperation between India and Vietnam. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: The Election Commission EC has issued a notification for the constitution of a new assembly in West Bengal following the completion of the electoral process in the state. The notification has been sent to the governor of West Bengal, formally marking the end of the election cycle and setting the stage for the formation of a new government. A senior EC

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: गुड मॉर्निंग, और आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 पर। वर्ल्ड स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 10:04, और मैं हूँ आपके साथ RJ रफली। तो दोस्तों, आप कहाँ से भी सुन रहे हो, कहीं पर भी हो, या क्या कुछ भी कर रहे हो, यू नो, अपना टाइम निकाल रहे हो थोड़ा अपने आप को अनवाइंड करने के लिए, या एकदम तैयार हो रहे हो टू गेट ऑन टू विद द डेली रूटीन्स, हम जो है आज का इस शो जो है एक रिमाइंडर के साथ स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि ईच मॉर्निंग जो है वी आर बॉर्न अगेन। सो आज क्या करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आप क्या भी सोच रहे हैं, नो, जो भी परेशानियां हैं, थोड़ी देर के लिए जब तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तब तक के लिए उन्हें थोड़ा नो दूर रखते हैं हमसे, और फिर आपके साथ जो है मैं आप शेयर करने के लिए ढेर सारी खबरें हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है, और गाना जो है वो हमेशा आपके लिए तैयार रखते ही हैं। तो और कहते हैं ना, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो हीलिंग विच डजेंट हैव टू बी, यू नो, बाउंड्रीज नहीं होती है म्यूज़िक को। तो इसी म्यूज़िक के सिलसिले को हम आगे रखते हुए जो है इस सफ़र को शुरुआत करते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो 101.9।
1: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన April 26 నుంచి June 9 వరకు, May 11 నుంచి June 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఎంటిటీ సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎనుమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
2: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాసం, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपके साथ आरजे रफली। तो हाँ, जो है मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी खबर जो लिटरली आपको उड़ान के नए मतलब जो है वो समझा देगी। तो आज का ये सेगमेंट जो है बियॉन्ड द रनवेज, क्योंकि अब फ्लाइट सिर्फ रनवेज से ही नहीं पानी से भी टेक ऑफ होने के लिए एकदम तैयार है। क्योंकि ये एकदम करेक्ट सुना है आपने कि इंडिया इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस, एंड दिस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी ड्रीमी डेस्टिनेशन विच इज लक्षद्वीप। तो इमेजिन कीजिए, आप इस आइलैंड पे हो और आपके चारों ओर वो टर्कोइश ब्लू वाटर है, सॉफ्ट ब्रीज आ रही है, और इंस्टेड फॉर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग फेरी राइड आप सीधा पानी से ही उड़ान भर रहे हो। साउंड्स लाइक अ मूवी सीन, इजंट इट? बट अब ये रियलिटी बनने वाली है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इंडिया की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस जो है इज ऑल रेडी टू टेक ऑफ इन लक्षद्वीप। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, यू लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9।

0: FM Rainbow 101.9।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब। तो हम बात कर रहे थे इस गाने से पहले इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस के बारे में, जो एकदम रेडी है, जो टेक ऑफ हो रही है लक्षद्वीप से। तो जैसे मैंने कहा कि ये इमेजिन करने के लिए ही कितना अच्छा लग रहा है, एंड इट साउंड्स लाइक अ मूवी सीन, बट अब ये एक रियलिटी बनने वाली है बहुत ही जल्द, राइट? तो इस इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं स्काई होप एविएशन, जिसे रिसेंटली DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से एयर ऑपरेटर सर्विस सर्टिफिकेट मिल गया है। तो सिंपल वर्ड्स में बताएं तो इंडिया में पहली बार किसी एयरलाइन को जो है ऑफिशियली परमिशन मिला है स्केड्यूल्ड सी प्लेन सर्विसेज चलाने के लिए। तो ये सिर्फ एक एविएशन अपडेट ही नहीं, बल्कि एक ट्रैवल का पूरा एक्सपीरियंस चेंज कर सकता है। अब थोड़ा समझते हैं कि सी प्लेन होता क्या है। आई मीन, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, यू नो, कहीं पे इंटरनेट पे भी देखा होगा कि सी प्लेन्स कैसे ऑपरेट होती है। इंस्टेड ऑफ रनवेज, वो कैसे पानी में ही लैंड होती है और फिर वहाँ से ही प्लेन्स जो है टेक ऑफ होती है, अनलाइक द रेगुलर एयरक्राफ्ट जहाँ पे रनवे से प्लेन्स टेक ऑफ या लैंडिंग करते हुए हमें दिखती है। क्योंकि इन सी प्लेन्स के नीचे कुछ फ्लोटीज होती हैं और कुछ का बॉडी जो है बोट जैसा ही डिज़ाइन होता है, जो डायरेक्टली जो है लेक्स, रिवर्स या सी पे ग्लाइड करने में आसान होते हैं। और ऑनेस्टली, इंडिया जैसे कंट्री के लिए जहाँ पे विद लॉन्ग कोस्ट लाइन है, ब्यूटीफुल आइलैंड्स है और इतना सारा पानी, मतलब वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलते हैं, तो ये एक कह सकते हैं इट्स अ प्रैक्टिकल आइडिया है। और जैसे जैसे ये टूरिज्म और आगे बढ़ेगा, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट जो है इस एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। सो दैट्स विल बी क्या कह सकते हैं, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा इन ट्रैवलर्स के लिए भी उस जगह को एक नए तरीके से देखने के लिए। कमिंग अप नेक्स्ट सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म बर्फी, एंजॉय दिस ट्रैक।

0: 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन्स की जर्नी जो है वो टेक ऑफ होने वाली है फ्रॉम लक्षद्वीप. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लक्षद्वीप और इट्स जर्नी कैसे शुरू हो रही है उसकी, क्योंकि लक्षद्वीप जो है इट इज़ नोन फॉर इट्स स्टनिंग आइलैंड्स एंड ट्रैवलिंग देयर इज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग रेस्ट ऑफ कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस. एंड यू नो टिल नाउ हाउ मेनी राइड्स नीड टू बी टेकन और द वेटिंग टाइम टू गेट फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर आइलैंड, इट इज अ लॉट मोर टाइम कंज्यूमिंग. सो नाउ द थिंग्स आर अबाउट टू चेंज एज स्काई हॉप प्लान्स टू स्टार्ट विद 9-seater सी प्लेन्स दैट विल कनेक्ट 5 आइलैंड्स एंड ऑल्सो टू द मेनलैंड इंडिया. एंड this will make a beginning of change in tourism and how people will look up to these ideas and how they can reduce their time of waiting and how they can experience a new kind of thing during their vacation and remember this experience for their lifetime as well, right? And also it's not only for tourists that is this is helpful, but for the residents over there, they'll have faster access to healthcare, educations, and as I talked about, for travelers it will be very useful for multi-island trips, finally making the commute very easy and helpful.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस के बारे में। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये सर्विस जो है टेक ऑफ होने वाली है लक्षद्वीप से, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक प्लान है, क्योंकि रीसेंट ट्रायल्स जो है ऋषिकेश में सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। वाटर टेक ऑफ्स हो या लैंडिंग हो, सब स्मूथ हुआ है, और मतलब कॉन्सेप्ट जो सोचा गया था वो अब रियलिटी के काफ़ी क्लोज आ चुका है। बट ये स्टोरी सिर्फ लक्षद्वीप तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि सोचिए अगर ये सर्विस केरला के बैक वाटर्स में देखने को मिल जाए, या नॉर्थ ईस्ट के रिवर रीजन्स के पास, या अंडमान एंड निकोबार के रिमोट आइलैंड्स में। तो जैसे लक्षद्वीप आइलैंड्स है, वैसे ही अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स भी हैं, जहाँ पे यू नो ट्रैवलर्स को या वहाँ के रेसिडेंट्स को कम्यूट करने के लिए यू नो बोट्स की ज़रूरत होती है, बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है एक फेरी राइड के लिए। तो शायद जब ये सर्विसेज वहाँ आ जाएंगी तो उनके लिए थोड़ा ये जो कम्यूट का वक्त है वो शायद हेल्पफुल हो चुका है। तो मतलब फॉर द रेसिडेंट्स, वहाँ के लोकल्स के लिए, और साथ में जो भी टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे तो

उनके लिए ये सर्विस काफी हेल्पफुल होगा। तो टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो जब टूरिज्म में ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है ना, और जब ऐसी कुछ खबरें हमें सुनने को मिलती है तो कुछ नया ट्राई करने की वो क्यूरियोसिटी, वो इच्छा हम में भी जाग उठती है। तो मतलब ये ट्रायल्स अभी यू नो ऋषिकेश में हो चुके हैं, तो बहुत ही जल्द सारे टेस्ट और सारे जो प्रोसीजर्स है उसे कम्प्लीट करने के बाद ये जब ये यू नो लक्षद्वीप से टेक ऑफ होगा और फिर धीरे धीरे करके अदर डेस्टिनेशंस में भी आएंगे, तो ये टूरिज्म के लिए काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि जो डेस्टिनेशंस पहले यू नो टू फार या टू कॉम्प्लिकेटेड लगते थे, अब वीकेंड गेट अवे बन सकते हैं, और ऑनेस्टली फ्लाइट का एक्सपीरियंस जो है चेंज हो सकता है बहुत लोगों के लिए। आई मीन हम में से बहुत लोगों ने फ्लाइट एक्सपीरियंस किया होगा, वी टेक ऑफ फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस, बट वो एक्सपीरियंस अलग है। तो ये सी प्लेन से टेक ऑफ होना भी एक्सपीरियंस अपने आप में ही है। तो चैलेंजेस भी आएंगे ऑफ कोर्स, वेदर कंडीशंस हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट हो सकते हैं, या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, बट इस बार लग रहा है कि ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड सीरियस बिगिनिंग है, और यहाँ पे प्लानिंग के साथ काफ़ी टेस्ट एंड ट्रायल्स के साथ ही जो भी अगला कदम है वो उठाया जाएगा। और कौन जाता है, कौन जान सकता है कि मे बी नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैवल करो, आपकी फ्लाइट जो है वो रनवे से नहीं, एकदम सी से या समुंदर से ही टेक ऑफ हो जाए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। तो मतलब तैयार हो सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम पे इंडिया की ट्रैवल सीन एक नई डेस्टिनेशन लेने वाली है, या एक नई डायरेक्शन की ओर जाने वाले हैं, जहाँ पे ट्रैवलर्स को या टूरिज्म टूरिस्ट के लिए ये काफ़ी अच्छी यू नो नया चेंज हो सकता है। तो इम्पैक्टिंग बोथ दी ट्रैवलर्स, वहाँ के रेसिडेंट्स, एंड स्पेशली फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। आप सुनते ही आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, एंड स्टे ट्यून्ड टू नमस्ते हेलो आदाब।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। तो जैसे अभी हमने इससे पहले इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल प्लेन के बारे में बात की है, कैसे वो इज ऑल सेट टू टेक प्लेस इन लक्षद्वीप, और उसके बाद बहुत और जगहों पे शायद इसकी ट्रायल्स एंड टेस्टेड हो सकती है। तो फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में आरजे आलिया भी हैं, तो वो भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाई है शेयर करने के लिए, तो उनका भी स्वागत करते हैं। तो आलिया, तो आप हमारे लिए क्या लाइए?

Namaste, hello, adab. I am Alia right here with you and you are listening to Akashvani Hyderabad FM Rainbow 101.9. Aaj ka din kafi interesting hai kyunki aaj hai International No Diet Day. Ek aisa din jo hame remind karta hai ki hame apni body se pyar karna chahiye, na ki use compare ya judge karna chahiye. Aaj ke time mein social media ne ek perfect body ka idea bana diya hai, but reality ye hai perfect body jaisa kuch hota hi nahi. हेल्दी रहना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खुश रहना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो टुडे जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ, आई विल बी काइंड टू माई सेल्फ. और हाँ, आज कुछ और फन डेज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, नेशनल बेवरेज डे. तो अपनी चाय या कॉफ़ी इन्जॉय करो. एंड टुडे इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज नेशनल नर्सेज डे. तो आज की वाइब सिंपल है, इन्जॉय लाइफ, अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव. और इसी पॉजिटिव मूड के साथ चलिए सुनते हैं एक सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मेड इन चाइना.

आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और ये म्यूजिक जर्नी अब और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने नोटिस किया होगा म्यूजिक का इफेक्ट हर किसी पर डिफरेंट होता है। सेम सॉन्ग किसी के लिए मेमोरी होती है और किसी के लिए मोटिवेशन, और किसी के लिए बस एक अच्छा सा वाइब, और शायद इसीलिए म्यूजिक इतना पर्सनल लगता है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। आज के दिन हम याद करते हैं मोतीलाल नेहरू को। ही वॉज बॉर्न ऑन 6 मई 1861। एक सक्सेसफुल लॉयर होने के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ देश के लिए डेडिकेट की। कंफर्ट चूज करना इजी होता है, बट पर्पस चूज करना, दैट टेक्स करेज। और कभी कभी हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम सिर्फ बिजी हैं या एक्चुअली मीनिंगफुल कुछ कर रहे हैं। डीप थॉट है लेकिन ज़रूरी भी है, और इसी थॉटफुल मूड के साथ लेट्स लिसन टू अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग।

You are listening to आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9। अब बात करते हैं नेशनल नर्सेज डे की। एज आई ऑलरेडी मैंशनड दैट टुडे इज नेशनल नर्सेज डे, एक ऐसा दिन जो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो हर दिन दूसरों की केयर करते हैं बिना थके बिना रुके, लॉन्ग शिफ्ट्स, इमरजेंसी सिचुएशंस और कभी कभी इमोशनल स्ट्रेस भी, फिर भी दे शो अप एवरी सिंगल डे विद स्माइल। दैट्स रियल डेडिकेशन। आज का दिन सिर्फ सेलिब्रेट करने का नहीं बल्कि उन्हें अप्रिशिएट करने का है। अगर आप किसी नर्स को जानते हैं तो उन्हें एक सिंपल थैंक यू जरूर बोलिए, बिकॉज दे ट्रूली डिजर्व इट। तो सभी अमेजिंग नर्सेज के लिए दिल से सैल्यूट एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डू। और इसी के साथ लेट्स लिसन टू एन अमेजिंग ट्रैक।

वेलकम बैक। आज का शो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी है। कभी कभी ना हम दूसरों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन खुद के लिए नॉट रियली। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, कंपैरिजन, ये सब नॉर्मल हो गया है। लेकिन याद रखो, लाइफ कोई रेस नहीं है और हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। थोड़ा स्लो होना, थोड़ा रुकना, ये भी ज़रूरी है। इवन अ फ्यू मिनट्स ऑफ गुड म्यूजिक कैन कम्प्लीटली रिफ्रेश योर माइंड। और इसी काम वाइब के साथ लेट्स लिसन टू समथिंग सूदिंग।

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। तो दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे हम उस पुरानी टेक की कहानियों को याद करेंगे आज, कि आज की दुनिया में उस टेक्नोलॉजी ने कैसे शेप किया। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसे लेजेंडरी मोमेंट को, वो है एप्पल आईमैक के रिवील की एनिवर्सरी। क्योंकि आज इस मोमेंट में, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया था, यानी कि इन द ईयर 1998 मई 6 को ही स्टीव जॉब्स ने मैक वर्ल्ड इवेंट पे स्टेज पर ही एप्पल को, फाउंडर स्टीव जॉब्स जब इस कंपनी में 11 साल के बाद वापस आए, और वापस आते ही उन्होंने ये प्रोडक्ट को अनवील किया था, और वो था एप्पल का आईमैक। और ट्रस्ट मी, इट चेंज्ड एवरीथिंग, इजंट इट। और जब से आईमैक को इंट्रोड्यूस किया है एज अ परफेक्ट मिक्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सकती है, मैक एंड्रॉइड की सिंपलिसिटी, मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले तो एक ऐसा कंप्यूटर जो इंटरनेट यूज़ करने को और सिंप्लीफाई कर दिया, आसान बना दिया, या स्टूडेंट्स हो जाए या एजुकेशन सेक्टर के लिए, जो भी इस सेक्टर में जुड़े हैं, तो उनके लिए ये एक गेम चेंजर बनने वाला था जब ये रिलीज़ हुई थी। तो इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे स्टीव जॉब्स जो है एक आइकॉनिक इनोवेटर कह सकते हैं, एक लीडर थे जो चाहते थे कि कस्टमर्स उनकी प्रायोरिटी हो, और कस्टमर्स को क्या चाहिए उनसे पहले एक इनोवेटर को सोच लेना चाहिए। तो उनकी इस क्रिएटिव वर्ल्ड के बारे में, या इस या मैक के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे ऑन दिस इवेंट। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन नमस्ते हेलो आदाब ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजे रफली। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे और 1998 में मई 6 को जो है आई मैक को रिवील किया गया था। स्टीव जॉब्स ने ही मैक इवेंट पे जो है इसे रिवील किया था। तो उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में तब तक के कंप्यूटर्स को जो है ब्रूटली ऑनेस्ट फीडबैक दिया था कि कैसे वो कंप्यूटर्स यू नो स्लो परफॉर्मेंस देते हैं, कैसे डल डिस्प्लेस थे और कितनी वीक नेटवर्किंग थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन्होंने उन्हें मेंशन किए थे उस रिवील के दौरान। और फिर उन्होंने इसके बाद आई मैक को इंट्रोड्यूस करते हुए इसकी डिज़ाइन इतना मॉडर्न बताया कि इवन इट्स बैक लुक्स मोर अट्रैक्टिव इन फ्रंट ऑफ द कंपिटिटर्स कंप्यूटर्स। मतलब ये एकदम क्लासिक स्टीव जॉब की कॉन्फिडेंस है। एंड लेट मी कोट वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोट्स ऑफ स्टीव जॉब्स ऑन इनोवेशन। ही सेड दैट इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर एंड द नेसेसिटी टू इनोवेट इट्स वे आउट ऑफ इट्स करंट प्रेडिकमेंट। मतलब ये बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना कि लीडर्स बहुत कम आते हैं, फॉलोअर्स जो है जो जैसे बनता है वो फॉलो करते हैं, बट एक लीडर ही है जो वो चेंज लाता है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि नो वो चाहते थे कि कस्टमर्स की मेन प्रायोरिटी रहे और कस्टमर्स को ये चाहिए, ये नीड आए उससे पहले ही वो नो अपनी इस टेक्नोलॉजी पे अपना गेम चेंज करते थे कि व्हाट मोर वी कैन गिव टू द कंज्यूमर्स और कैसे उनकी लाइफ को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कोर्स। तो और भी बात करेंगे कि डिज़ाइन की बात करें तो आई मैक जो था वो एक रेवोल्यूशन था। तो उसके बारे में बात होगी बट राइट आफ्टर दिस ट्रैक, सो स्टे ट्यून्ड।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली। तो हमने बात किया कि आज ही के दिन मई 6 को 1998 में कैसे एक ये बिग रिवील हुआ था आईमैक का और कैसे स्टीव जॉब्स 11 इयर्स के बाद फिर से इस कंपनी में आए और फिर उन्होंने इस इवेंट पे इस बिग रिवील को बताया और बताते हुए उन्होंने कहा कि जो पुराने कंप्यूटर्स हैं उनमें क्या कमी है और क्यों डिज़ाइन और फैशन भी ज़रूरी है विद द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो तब से अगर आज तक हमने देखा तो इस कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ देखा है एंड वो जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो हमने देखा आईफोन्स को मार्केट में आते हुए, देन मैकबुक्स और मॉडर्न टेक डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है। सो इनोवेशन इज समथिंग दैट स्टीव जॉब हैज़ रेगुलरली मेंशन दैट इनोवेशन मेक्स अ लीडर डिफरेंट फ्रॉम अ फॉलोअर। तो फिलहाल मैं आपके लिए गाना प्ले कर रही हूँ और उसके साथ आपके साथ जुड़ेंगी आरजी दिव्या जो आपके लिए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आई है। तो उनके साथ और हम सभी के साथ बने रहिएगा ओनली ऑन आकाशवाणी FM Rainbow 101.9।

नमस्ते, हेलो, आदाब. यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी हैदराबाद, FM रेनबो 101.9. एज दिव्या ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट फ्रेंडशिप, तो मैं भी इस बारे में बात करने वाली हूँ. और कभी कभी ज़िंदगी में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उन लोगों को टाइम देना भूल जाते हैं जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. और आज मैं बात करने वाली हूँ उन्हीं लोगों के बारे में जो बिना किसी रीज़न के हमें हंसा देते हैं और बिना कुछ कहे हमारी बात समझ जाते हैं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप. दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी को ईजी बनाता है बल्कि उसे थोड़ा और ब्यूटिफुल भी बना देता है. तो चलिए बात करते हैं इस खूबसूरत एहसास की. कभी कभी ज़िंदगी की भीड़ भरी राहों में जब सब कुछ थोड़ा मुश्किल सा लगने लगता है, जब लोग समझ नहीं पाते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, तब एक दोस्त ही होता है जो बिना कुछ कहे हमारी आंखों में छुपी बात समझ लेता है. बिकॉज फ्रेंडशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द साइलेंस बिटवीन दोज वर्ड्स. तो इसी के साथ सुनते हैं एक ब्यूटिफुल सॉन्ग. स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद, FM रेनबो 101.9.

0: Bilingual 101.9.
1: Welcome back. You're listening to Akashwani Hyderabad FM Rainbow 101.9. तो दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी के पन्नों को पलट कर देखें तो हर इम्पोर्टेंट मेमोरीज के साथ एक दोस्त जरूर जुड़ा होता है। चाहे वो स्कूल का पहला दिन हो जहां हम डरे हुए क्लास में बैठे थे और किसी ने हमें स्माइल देकर कंफर्ट दिया था, या फिर वो दिन जब हमने बिना किसी वजह के इतना हंसा कि आंसू आ गए। वो छोटी छोटी बातें, वो बिना मतलब के कॉन्वर्सेशंस, वो एक दूसरे को तंग करना और फिर मना लेना, ये सब मिलकर दोस्ती को एक खूबसूरत कहानी बना देते हैं। Those were not just moments, those were memories in the making. सच्ची दोस्ती की

0: लिसनिंग टू आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9। तो दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी के पन्नों को पलट कर देखें तो हर इम्पोर्टेंट मेमोरीज के साथ एक दोस्त जरूर जुड़ा होता है। चाहे वो स्कूल का पहला दिन हो जहां हम डरे हुए क्लास में बैठे थे और किसी ने हमें स्माइल देकर कम्फर्ट दिया था, या फिर वो दिन जब हमने बिना किसी वजह के इतना हंसा कि आंसू आ गए। वो छोटी छोटी बातें, वो बिना मतलब के कॉन्वर्सेशंस, वो एक दूसरे को तंग करना और फिर मना लेना, ये सब मिलकर दोस्ती को एक खूबसूरत कहानी बना देते हैं। दोज वर नॉट जस्ट मोमेंट्स, दोज वर मेमोरीज इन द मेकिंग। सच्ची दोस्ती की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, चाहे जिंदगी हमें अलग अलग रास्तों पर ले जाए, लेकिन जब भी हम वापस मिलते हैं तो लगता ही नहीं कि कभी दूरी आई थी। कभी कभी एक दोस्त हमारी जिंदगी का वो हिस्सा बन जाता है जिसके बिना हम अपनी कहानी अधूरी महसूस करते हैं। और सच कहूं तो हर किसी के पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो उनके सबसे बुरे दिन में भी उन्हें हंसा सके। अ ट्रू फ्रेंड डजंट फिक्स योर प्रॉब्लम्स बट मेक्स देम ईजियर टू फेस। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।
1: It's like strawberries.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back. You're tuned into Akashvani Hyderabad, FM Rainbow 101.9. And yes, I was talking about friendship. आज के इस डिजिटल जमाने में जहां हर चीज फास्ट हो चुकी है, जहां कॉन्वर्सेशंस, टाइपिंग और इमोजीज तक सीमित हो गई हैं, वहां कहीं ना कहीं हम वो असली कनेक्शन खो देते हैं जो एक वक्त पर हमारी दोस्ती की पहचान हुआ करता था। याद है वो लम्हे जब हम बिना किसी प्लान के मिल जाते थे, बिना किसी वजह के घंटों बातें करते थे और वक्त का पता ही नहीं चलता था। आज सब कुछ शेड्यूल हो गया है, लेकिन शायद वो असली खुशी कहीं पीछे रह गई है। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ ऑनलाइन कनेक्शंस, रियल फ्रेंडशिप इज स्टिल ऑफलाइन। लेकिन दोस्तों, दोस्ती का असली जादू ये है कि ये वक्त और दूरी से कभी कम नहीं होती। चाहे आप रोज बात करें या महीनों बाद मिलें, अगर रिश्ता सच्चा है तो एहसास हमेशा वही रहता है। फ्रेंडशिप इज द ओनली रिलेशनशिप वेयर डिस्टेंस, टाइम एंड साइलेंस नेवर ब्रेक द बॉन्ड। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड टू नमस्ते हेलो आदाब।

0: अब आप सुनेंगे न्यूज़ इन हिंदी फॉलोड बाय न्यूज़ इन इंग्लिश. स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है. इससे पहले भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक

0: स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तोहलाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोंडकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल एक संशोधित वीडियो का खंडन किया है। इसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष विराम समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं से हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 77,123 पर, जबकि निफ्टी 65 अंक की वृद्धि के साथ 24,098 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi is holding talks with visiting Vietnamese President Tho Lam in New Delhi. Both the leaders are expected to discuss wide-ranging bilateral issues. Tho Lam, who is on a 3-day visit to India, was earlier accorded a ceremonial welcome at Rashtrapati Bhavan this morning. The Vietnamese leader was received by President Draupadi Murmu and Prime

101.9. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन एफएम रेनबो 101.9। वेल स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 12:11 और 18 सेकंड और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली। तो दोस्तों, समर सीजन है, ऑफकोर्स मई का महीना है, मतलब समर विल बी पीक है ना। इसकी हम टेम्परेचर्स देखते आ रहे हैं, हर बार न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि कैसे बहुत सारे शहरों में डिग्रीज इतने बढ़ चुके हैं और कैसे हमें बताया जा रहा है दैट स्टे इनडोर्स एज पॉसिबल एज यू कैन, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है। तो जब भी बाहर निकले तो एटलीस्ट 3 या 4 के बाद ही घर से कदम बाहर रखें। अगर इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है तो घर के अंदर ही इनडोर्स ही रहना जो है वो बताया जा रहा है, दैट इज़ सेफ। तो इस बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें बचपन से बहुत पसंद है ना, क्योंकि गर्मियों का मौसम मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ, राइट। समर वेकेशन का हमें कितना इंतज़ार होता था यार, स्कूल जाते थे फिर भी हमें बैक ऑफ द माइंड में ये पता होता था कि मतलब अभी स्कूल की मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली है। तो आज जो हम हैं तो इसी मौके पर मैं आपको ले चलती हूँ एक कूल एस्केप प्लान पर, क्योंकि जब साउथ इंडिया की गर्मी फर्नेस मोड पे चली गई है ऑलमोस्ट कह सकते हैं, तो दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है और वो है कहीं ठंडी हवा हमें कहीं से बस मिल जाए, अब वो कहीं पर भी हो। बट आज हम जब पीक समर सीजन होता है, बहुत सारे जगह हैं जो हमारे देश में काफ़ी पॉपुलर स्पॉट्स हैं ना, लाइक ऊटी हो गया, मुन्नार, कूर्ग, शिमला, ऐसी जगहों पे बहुत सारे लोग जाते हैं। बट कुछ ऐसे हिडन जेम्स हमारे देश में हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स इन प्लेसेस के बारे में उतना नहीं जानते या इतना ये वाइडली पॉपुलर नहीं है, तो इसीलिए इन्हें जो है जेम्स कह रहे हैं जो छुपे हुए हैं। तो बात करते हैं कुछ अंडररेटेड हिल स्टेशंस के बारे में जो साउथ इंडिया में है, बट आफ्टर दिस ट्रैक, सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9।

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 एंड 3 o'clock में वक्त हुआ है 2:17:20. तो मैंने इस गाने से पहले आपसे कहा था कि कुछ साउथ इंडिया में ऐसे कुछ अनरेटेड हिल स्टेशंस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं टू एस्केप दिस समर हीट. तो पहली जगह है एंड दिस प्लेस इज सिटिंग अराउंड 1500 meters इन द शेवरॉय हिल्स और इस जगह का नाम है यारकाट. मतलब ये एक ऐसी जगह है जो एक पीसफुल दोस्त की तरह है जो यू नो हम पे ज़्यादा चिल्लाता नहीं है ना. हमें वो दोस्त पसंद है जो हमारी बात खामोशी से सुन ले, ना कि यू नो हम पे चिल्लाए. तो वैसा ये एक दोस्त है, एक बहुत ही काम पीसफुल जैसा फ्रेंड, बट ऑलवेज हमें एक काम वाइब्स देता है. तो ये जगह एक ऐसी प्लेस है और फिर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कॉफ़ी और ऑरेंज के प्लांटेशन से भरे यू नो स्लोप्स मिलते हैं. और ना ही इसके साथ साथ जो है यहाँ का ये प्लेजेंट वेदर जो है सिर्फ ये इसी टाइम पे अवेलेबल नहीं रहता, ये थ्रू आउट द ईयर ऑल राउंड रहता है. तो कभी भी अगर आपका मन चाहे टू फाइंड एन एस्केप इनटू यू नो पीस के लिए हो जाए या यू नो फॉर सम रिजुविनेशन अपने आप के लिए थोड़ा समय निकाले, तो ये एक ऐसी जगह है ऑल थ्रू द ईयर जहाँ पे आप जा सकते हैं, अनवाइंड कर सकते हैं. और फिर यहाँ पे आपको मिलते हैं क्लियर फॉल्स, जो कि कह सकते हैं एक परफेक्ट गेटअवे प्लान हो सकते हैं अगर आप यू नो तमिलनाडु में रहते हैं. आपकी दोस्त जो है वहाँ पे लोकल्स वहाँ इस जगह के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो जाते नहीं है, क्योंकि ये इतना अनकॉमन प्लेस है, बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं. और कहते हैं यहाँ के ओल्डेस्ट बंगलोज जो है वो देते हैं आपको एकदम वो रियल पीस वाली वाइब्स जो आप ढूंढते हो. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम प्लेसेस जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हो या भले ही अपने दोस्तों के साथ एक गेट अवे प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जा सकते हो जस्ट टू अनवाइंड योर सेल्फ, अपने आप को ढूंढ सकते हो थोड़ा यू नो फ्रॉम द केओस ऑफ द सिटीज और थोड़ा स्लो पेस लिविंग के लिए. तो और भी ऐसी और जगहें हैं जो अंडररेटेड है और यहीं साउथ इंडिया में ही है, तो बात करेंगे उनके बारे में. फिलहाल आपके लिए आ रहा है एक गाना, तो उसे सुनिए और बने रहिएगा हमारे साथ ओनली ऑन नमस्ते हेलो आदाब पर.

Welcome back. You're listening to Akashwani FM Rainbow 101.9. We've been talking about some underrated hill stations, especially in South India, where people don't know much about these places. As I spoke earlier about Yarkad, which is in Tamil Nadu. Similarly, we also have another place in Tamil Nadu, which is येलागिरी. मतलब ये जगह जो है बेंगलुरु से सिर्फ कुछ घंटों की ड्राइव पे है और यहाँ आप पहुँच जाते हो एक क्वाइट लिटिल प्लाटू पर. ये जगह येलागिरी जो है बहुत ही छोटा है बट बोरिंग बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है पुंगनूर लेक, यहाँ की सीनिक रिजेस और पैराग्लाइडिंग तक का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है. सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम हु टेंड्स टू यू नो डू सम एडवेंचरस थिंग्स, आपको कुछ नई चीज़ें अटेम्प्ट करने हैं, सो दिस इज़ द स्पॉट फॉर यू. यू कैन यू नो एक्सपीरियंस समथिंग रिलेटेड टू पैराग्लाइडिंग. और यहाँ पे फॉरेस्ट हनी यहाँ की काफ़ी बहुत फेमस है, तो एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर यहाँ की ये वाली हनी याद रखेंगे. सो ये जगह आपको छोटी लग सकती है बट बोरिंग बिल्कुल नहीं लग सकती है, इसकी गारंटी जो है यहाँ के लोग देते हैं.

है तो कुछ पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, या अपने आप के लिए एक वक्त निकाल के जस्ट रिट्रीट कर सकते हैं। अगला गाना आ रहा है फ्रॉम द मूवी बालिका, बट एंजॉय दिस ब्यूटिफुल एंड पॉपुलर ट्रैक।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: FM Rainbow 101.9।
1: आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूं आपके साथ आरजी रवली, जहां पे हम बात कर रहे हैं कुछ 5 अंडररेटेड हिल स्टेशंस के बारे में जो हमारे यहां साउथ इंडिया में ही है, दैट कैन बी योर लिटिल एस्केप टू बीट द समर हीट। तो हमने अब तक जाना कि तमिलनाडु में 2 ऐसी जगहें हैं जहां पे आप यू नो कैन गो इन टू दिस एस्केप समर से बचने के लिए, थोड़ा रिट्रीट करने के लिए। तो अब हम पहुँच जाते हैं केरला। तो गोल्डन पीक से ये जगह काफ़ी फेमस है, जो जाना जाता है एज पनमुड़ी वेस्टर्न गार्ड्स। ये एक हिडन ट्रेजर माना जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी वो दूसरी टूरिस्ट जगह से कंपेयर किया जाए। और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा मोर देन 150 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज और रेयर वाइल्ड ऑर्किड्स, और साथ ही में यहाँ का ब्रिलियंट वरयमुता ट्रैक जो इस जगह को बनाता है पैराडाइज एस्पेशली फॉर द नेचर लवर्स। और साथ ही में कहते हैं यहाँ की एडवेंचर जो है शुरू हो जाती है विद द वाइंडिंग 22 हेयरपिन बेंड्स की ड्राइव से। तो मतलब यहाँ पे आप जब पास आते हो तो ड्राइव से ही आपको एक एडवेंचर स्पिरिट जो है आपका वहाँ से शुरू हो जाता है, कुछ नया देखने का, कुछ नया फील करने का। और साथ ही में लोकल क्यूजींस जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं ट्राई करने में अपना ही मज़ा अलग होता है ना। नई जगह, नया यू नो वो सरीन सी पीसफुल वाइब्स आपको जब अब मिलते हैं, आपका माइंड भी काफ़ी काम रहता है, पीसफुल रहता है। तो नया कुजीन भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं जो लोकली काफ़ी फेमस है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे गए हैं उनका बताना यही है कि जब भी हम नए जगह जाते हैं स्पेशली टू दी लेस नोन प्लेसेस, तो वहाँ की लोकल कुजीन को ट्राई करना बनता है। तो फिलहाल आता है एक और गाना और उसके बाद एक कमर्शियल स्पॉट, तो उसके बाद हम वापस हो जाएंगे और जाने के लिए कि और वो 2 जगह कहाँ पे है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन FM रेनबो 101.9।

0: Rainbow 101.9.
1: Welcome back. आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब पर हम बात कर रहे हैं अबाउट दोज फाइव अंडररेटेड हिल स्टेशंस जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है. तो अब आप पहुंचते हैं हम अरुकू वैली की तरफ जो है आंध्र प्रदेश में. तो ये जगह जो है माना जाता है सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि इसकी जर्नी भी जो है एक एक्सपीरियंस है अपने आप में. क्योंकि जब आप इस जगह पर जाते हो आपको ट्रेन राइड विद इन द टनल्स आपको यू नो एक्सपीरियंस कर सकते हो. ब्रिजेस और हिल्स का ये कॉम्बिनेशन जो है देखने में इट्स ऑलरेडी सिनेमैटिक. मतलब सोचने के लिए भी आपको वो एक इमेज बन जाता है ना दिमाग में कि शायद ये जगह ऐसी होगी. तो शायद ये जगह बिल्कुल वैसी ही रहती है. मतलब मैं जितना भी बोलूँ शायद वो कम ही पड़ जाता है क्योंकि नेचर के आगे हम कितना बोल पाएंगे है ना. बट नेचर हैज़ दैट मैजिक विद इन इटसेल्फ राइट. तो जब आप जाते हैं उस जगह पे खुद एक्सपीरियंस करते हैं दैट मेक्स अ वेरी मच बिग डिफरेंस राइट. और जब आप पहुँचते हो वहाँ पे यू कैन एक्सपीरियंस द अवार्ड विनिंग ट्राइबल कॉफ़ी. वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो आदिवासी कल्चर को देख सकते हो और साथ ही में वहाँ की फेमस बुरा केव्स की एंशंट ब्यूटी को भी देख सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जगह है कर्नाटका में. इस जगह को जाना जाता है एज द चिरपुंजी ऑफ साउथ और जगह का नाम है अगुम्बे. तो अगुम्बे जो है माना जाता है एज मानसून लवर्स का ये ड्रीम प्लेस है क्योंकि यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं काफ़ी रेयर वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और इंडिया का फेमस किंग कोबरा रिसर्च स्टेशन भी यहीं है. एंड यू नो अगुम्बे गेट्स अराउंड 7,600 milliliters of rainfall a year, which explains why it's rainforest part and it's also part of UNESCO's World Heritage Corridor. Looks so lush even in summer. तो इसीलिए summer में भी मतलब ये जगह जैसे मैंने कहा it's still underrated. बहुत सारे लोगों को इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है but yes this is also a place you can visit to. But साथ ही में यहाँ पे एक और sunset point है जो अगर weather यहाँ पे clear हो तो आप अरेबियन सी तक का ग्लिम्स आपको वहाँ से मिल सकता है. एंड दैट इज़ मोमेंटरीली या कह सकते हैं बहुत सारे लोगों ने कहा है कि दैट इज़ अ लेजेंडरी व्यू एंड यू हैव टू वॉच इट फॉर योरसेल्फ. तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब भी गर्मी से एस्केप बनने का प्लान करें सिर्फ पॉपुलर डेस्टिनेशंस ही नहीं थोड़ी ऐसे अंडररेटेड डेस्टिनेशंस भी थोड़ा ध्यान में रखिए और फिर आप क्राउड भी कम कर सकते हो थोड़ा मेंटल पीस भी आपको मिल जाएगा एंड यू कैन स्पेंड दैट मी टाइम टुगेदर जो हम अपनी सिटी डेली लाइफ में कोशिश करते हैं बट इट डजेंट हैपन दैट सो ऑफन राइट. तो और भी कहानियाँ आपके साथ हम लेके आएंगे बट इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9.

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली. एनसीएल में वक्त हो गया है 1:01:25, यानी कि अब हम आ पहुँचे हैं उस सेगमेंट में जहाँ पे होती है आपसे बातें. तो टॉपिक की अगर हम बात करें तो दोस्तों, जैसे हमने समर के बारे में बात किया है ना कि कैसे समर रिट्रीट में हम पॉपुलर डेस्टिनेशंस के बजाय कुछ अंडररेटेड हिल स्टेशंस भी है जो आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो. और फिर समर से मेन चीज़ जो हमें याद आती है स्पेशली ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड, वो थी हमारी स्कूल की छुट्टियाँ, स्पेशली द समर वेकेशन. तो आज का सेगमेंट दिल से जुड़ा हुआ है, ये हम कह सकते हैं. थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं समर हॉलीडेज़ देन वर्सेस नाउ. मतलब क्या सबसे ज़्यादा बदलाव हमने देखा है तब के समर हॉलीडेज़ में और अब के इस समर हॉलीडेज़ में. क्योंकि याद है ना, उस टाइम पे गर्मियों का छुट्टियां, मतलब कहीं हम बाहर जाना होता था या कभी नो नानी या दादी के घर जाना होता था, कजिन्स के साथ मिलना, वो टाइम बिताना और फिर ना खेल खेलना और साथ साथ होमवर्क करते थे, बट वो हमारी लास्ट प्रायोरिटी होती थी, है ना. तो आप भी क्या डिफरेंस महसूस करते हैं, क्या बदला द मोस्ट अप और पिछले टाइम के और इस ज़माने के समर हॉलीडेज़ में, क्या अंतर आपने देखा है? आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं ऑन 2323-0030 और 0402323-4821, या डायल कर सकते हैं 0402970-4715 पर, या आप अपने मैसेज मुझे टाइप करके भेज सकते हैं ऑन 9140-2323-4822 पर. फ़िलहाल आपके लिए आ रहा है फ्रॉम द मूवी हाईवे पटाखा गुड़ी. एन्जॉय दिस ट्रैक.

0: तो आज का हमारा टॉपिक था कि समर हॉलीडेज वर्सेस तब और अब में क्या अंतर आया है, क्या नया चेंजेस आए. अगर हम फ्रीडम वर्सेस स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्लियर जब समर का मतलब होता था मैन टोटल फ्रीडम, राइट. जब गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे लेट उठा करते थे, स्पेंड आफ्टरनून्स प्लेइंग इन इंडोर गेम्स, और इवनिंग फिर बाहर खेलना होता था उन्हीं दोस्तों के साथ. जब तक पेरेंट्स हमें नहीं बुला लेते थे, हमें ना होमवर्क की चिंता थी ना खाने पीने की, हमारी जो इंटरेस्ट वो पीक होती थी, राइट. तो ये एक प्लानिंग होती थी. बट अगर आज की हम हॉलीडेज़ की अगर बात करें तो ये ऑफन जो है काफ़ी स्केड्यूल्ड हो चुके हैं. समर कैंप्स हमें मिलते हैं, कोडिंग क्लासेस है, डांस वर्कशॉप है, ट्यूशंस है. सो इवन ब्रेक्स कैन समटाइम्स फील्स लाइक एक्सटेंशंस ऑफ स्कूल. और क्योंकि बहुत सारे लोग भी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को ज्वाइन करवा रहे हैं, क्योंकि इसी टाइम पे थोड़ा उनको टाइम मिलता है, एम्पल टाइम, इन स्पाइट ऑफ हैविंग होमवर्क्स, या वहाँ पे थोड़ा लेट ही सही कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ में भेज देना शाम को या अर्ली इन द मॉर्निंग्स. खुद पेरेंट्स जाके अपने बच्चों को कुछ नई नई चीज़ें एक्टिविटीज़ में डाल रहे हैं सो दैट दे कैन लर्न समथिंग न्यू अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एज वेल. तो ये एक बदलाव हमने देखा है तब के वर्सेस अभी, है ना. तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल कोडिंग क्लासेस आ चुके हैं ताकि जितना अर्ली आप स्टार्ट कर सकते हो उतना अच्छा होगा. तो ये भी एक तरीके का इंटरेस्ट जो है काफ़ी क्रिएट हो चुका है. और अगर हम देखें, क्योंकि हम गर्मियों की छुट्टियों में स्पेशली गली क्रिकेट ज़्यादा फेमस होता था, या हम किसी के घर पे जाके लूडो हो जाए या कैरम हो जाए ये खेलते थे, और बिना एसी के फुल रूम भरा होता था. एंड तब हमें ना ज़्यादा गर्मी की फिक्र होती थी ना या खाने पीने की फिक्र होती थी, बस एक ही ध्यान होता था कि हमें ये गेम जीतना है बस. और अभी का मतलब कहीं ना कहीं इन सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ बहुत स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है ना. मोबाइल फ़ोन्स, वीडियो गेम्स, काफ़ी OTT शोज़ भी आ चुके हैं. एंड कहीं ना कहीं क्योंकि वेदर काफ़ी सिवियर हो चुका है तो पेरेंट्स का भी ये मानना ज़रूरी है ना कि ज़्यादा धूप में हम बाहर नहीं भेज सकते. सो दैट्स अ वैलिड पॉइंट, राइट. तो इसीलिए इंडोर स्पोर्ट्स है, इंडोर एक्टिविटीज़ भी है जो आप अपने बच्चों के साथ जो है करवा सकते हो. फिलहाल एक कमर्शियल स्पॉट आ रहा है, उसके बाद आपके लिए गाना तैयार है, तो बने रहिएगा ओनली ऑन FM रेनबो 101.9.
1: మీ సొంత ఇంటి కల సాకారానికి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి అద్భుత అవకాశం.
2: అతి తక్కువ వడ్డీ రేటు 7.15% గృహ రుణాలను అందిస్తోంది.
1: అంతేకాక మీ యొక్క అత్యవసరాలకై బంగారంపై తక్షణ రుణ సదుపాయం, అతి తక్కువ వడ్డీ రేటుతో పాటు గ్రాముకి అత్యధిక రుణం అందిస్తుంది.
2: మీ సమీపంలోని యూనియన్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ని నేడే సంప్రదించండి.

वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं समर हॉलीडेज के बारे में, देन वर्सेस नाउ के बारे में, मतलब क्या बदला है। अगर हम बात करें सिंपल ट्रैवल और क्यूरेटेड वेकेशंस के बीच, मतलब तब जो है ट्रेन जर्नीज काफ़ी सिंपल होती थी, यू नो, विथ स्टील टिफिन बॉक्सेस, विंडो सीट्स के लिए फाइट करना भाई बहनों के बीच में, और फिर वो हैंड रिटन रिजर्वेशंस। ट्रिप्स जो है ऑफन हम नेटिव प्लेसेस को जाते थे या तब पिलग्रिमेजेस को जाना, तब काफ़ी यही होता था। अगर अब की हम बात करें नाउ फ्लाइट्स, ऑनलाइन बुकिंग्स, रिजॉर्ट या इंटरनेशनल ट्रैवल और सोशल मीडिया के लिए फोटोज़ या हॉलीडेज जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो ट्रैवल जो है काफ़ी फ्रीक्वेंट हुआ है, बट इट्स ऑल्सो बिकम मोर क्यूरेटेड देन अर्लियर, राइट। मतलब तब हमें पता था कि हमें कहाँ जाना है, हर समर वेकेशन मतलब यही जगह हमें जाना है, तो वी नो द रूट वेल, और हमें पता था कि ट्रेन की जर्नी होने वाली है, तो कभी कभार हम अपनी वो मांग भी कर लेते थे कि हमें ट्रेन की जर्नी के दौरान ये खाना है या ये किताबें हमें लेके जाके पढ़ना है, टाइम कैसे स्पेंड करें, ये पूरी एक लिस्ट हमारी खुद की हमें बनाते थे। एक और हमारे पेरेंट्स जो है इस जर्नी को प्लान करते थे, तो हम इस जर्नी को कैसे एंजॉय करें वो हम प्लान करते थे, राइट। और अब कुछ और नया बुकिंग्स हम करते हैं, कुछ और नई जगह जाते हैं, यू नो, इन इंडिया मतलब हमारे देश में ही बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो हम देखना चाहते हैं, और इंटरनेशनल ट्रिप्स भी जो है लोग आजकल बहुत जाते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो, यू नो, गेट एक्वेंटेड विद द अदर कंट्रीज, दूसरे कल्चर्स और उनके कुजींस के साथ रूबरू हो सकते हैं। तो और भी बातें होंगी रिगार्डिंग दिस, आप हमें कॉल कर सकते हो 1040-2323-0030 या 2323-4821, या आप अपना मैसेज भी हमें टाइप करके भेज सकते हो ऑन 9140-2323-4822 पर।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 पर हेलो रेनबो, और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली। तो हम बात कर रहे हैं समर हॉलीडेज देन वर्सेस नाउ। तो अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट की, तब होता था स्केयरसिटी और अब है लॉट्स ऑफ मोर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी अबंडेंस है एंटरटेनमेंट की, राइट। अर्लियर एंटरटेनमेंट सीमित था हमारा, बस एक चैनल और फिर उसमें रीरन्स देख लेना या कॉमिक्स पढ़ लेना या मे बी अ VCR ऑन अ रेंटल बेसिस, राइट। दैट स्केयरसिटी मेड थिंग्स वेरी स्पेशल, राइट। तो हम उसके लिए काफ़ी इंतज़ार किया करते थे। अगर अब देखें तो अब जो बच्चे हैं उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है, मतलब ऑन डिमांड कंटेंट उनके पास है, सोशल मीडिया है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, नए नए गेम्स है। सो अटेंशन जो है काफ़ी फ्रैगमेंटेड हो चुका है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो तब सीमित थी बट अब अनलिमिटेड है। बट हाँ, उसे कैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन पे डिपेंड करता है। बट अगर आप अपने मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो टाइप करें और भेज दीजिए ऑन 9140232342 पर। कमिंग अप नेक्स्ट ट्रैक फ्रॉम द मूवी सैयारा, एंजॉय दिस ट्रैक।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं समर हॉलीडेज देन वर्सेस नाउ, मतलब क्या बदला है तब के और अब के समय में। तो कॉलर है, उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार सर,
2: मैं वॉलेट प्रभाकर राव बात कर रहा हूँ
1: जी। प्रभाकर जी, तो बताइए सर, क्या डिफरेंस आपने देखा है?
2: तो ये समर के बारे में हमारे पोत्रों को, हमारा तो टाइम गुजर गई
1: जी,
2: वो दुनिया में, हमारे पोत्रों को अभी क्या करो, धूप काल है ना मां?
1: जी, समर जी चल रहे हैं।
2: तो जब घर में कैरम और चेस सिखा रही है।
1: जी, अभी सिखा रहे हो आप?
2: सिखा रहे बोल तो खेल रहे हैं वो लोग, छोटा बच्चे है ना।
1: जी जी,
2: इतना 5 साल की 3 साल की है वो।
1: ओके,
2: अभी से शुरू करे तो बड़ा हुआ तो बहुत तेज होती
1: जी, तो ज्यादा और उनको अच्छे से आ सकते।
2: बहुत बहुत धूप हो गया उधर बोल के बेंगलुरु लेकर आए थे।
1: हाँ, ओके।
2: बेंगलुरु में थोड़ा मौसम अच्छा है, ठंडा है।
1: ओके, तो अच्छा जी, ऑलराइट।
2: वहाँ पर, यहाँ पर तो म्यूजियम है, बहुत बड़ा म्यूजियम है, अच्छा है बच्चों का देखने का।
1: ओके, तो आप वेकेशन पे गए हैं, आप अपने फैमिली के साथ? राइट राइट राइट सर, आई होप यू एंजॉयिंग योर वेकेशन।
2: थैंक यू
1: जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। राइट, तो हम बात कर रहे हैं ना कि कैसे चेंजेस आए हैं तब के और अब के समय में, और लर्निंग स्टाइल्स की अगर हम बात करें तो तब सीखना काफ़ी इनफॉर्मल होता था। लाइक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जब भी अगर कुछ वो काम कर रहे हो तो उनका थोड़ा बहुत छोटा मोटा हाथ हम बटा देते थे उनके कामों में, राइट। और फिर स्टोरीज सुनना हमें काफ़ी पसंद होता था तब, या पिकिंग स्किल्स ऑर्गेनिकली, तब यू नो इसी के लिए हमें बिठाया नहीं जाता था, तब देखते देखते हम पिक कर लेते थे कोई स्किल, राइट। क्योंकि कई बार क्या हुआ है, बहुत बार ऐसे ही हुआ है, अपने अपने पेरेंट्स के साथ भी देखा होगा, देख देख के कुछ काम उन्होंने सीखा है जस्ट लिविंग इन दैट एनवायरमेंट विद देम अराउंड, राइट। तो ऐसे भी काफ़ी लोग पिकअप कर लेते हैं, बट अब जो है कि थोड़ा पुश है टूवर्ड्स बींग प्रोडक्टिव इन हॉलीडेज एज वेल, मतलब आप कुछ सीख सकते हो, कोडिंग, रोबोटिक्स, ओलम्पियाड प्रिपरेशन, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर सकते हैं, कुछ कोकरर एक्टिविटीज़ अगर आप में इंटरेस्ट, आपको बच्चों को इंटरेस्टेड है तो उन्हें न दर्ज किया जा सकता है उन क्लासेस में, इंडोर क्लासेस रहते हैं। तो ये कुछ बदला है कि हॉलीडेज में भी यू नो कुछ बदलाव हम बच्चों को दे सकते हैं, कुछ नया उनको सिखाने का मौका मिलता है पेरेंट्स को भी। सो कमिंग अप नेक्स्ट ट्रैक, एंजॉय दिस वन एंड स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9।

0: होता है। न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो,
3: गुड आफ्टरनून मैडम।
2: गुड आफ्टरनून रमेश जी,
3: कैसे हैं मैडम?
2: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो?
3: हम तो सुपर के ऊपर हैं मैडम। आपके साथ और दो दूसरा कौन है मैडम?
2: जी मेरे साथ अभी आरजे दिव्या भी है स्टूडियो में।
3: मैडम का वॉन और अंडे। हेलो
2: जी सर, बात करते हैं।
3: हेलो मैडम गारु, ఎలా ఉన్నారు మేడం?
4: హాయ్ రమేష్ జీ, బోలియే।
3: कैसे हैं मैडम? अच्छे
4: हां।
3: अच्छा, टॉपिक के ऊपर केरे में बात कर रहा हूं। मैंने हमारे बचपन में बहुत खेलना कूदना बहुत ज्यादा रहता था मैडम।
4: हाँ जरूर, उस समय
3: आजकल के बच्चे फोन पकड़ लेके बैठ जा रहे, फोन के अंदर ही कबड्डी खेल रहे, फोन के अंदर ही क्रिकेट खेल रहे, सब ऐसा हो गया।
4: हाँ
3: हाँ, जब भागते थे कूदते थे वैसा था, अभी नहीं है। और
4: बोले तो
3: मैं बच्चों का भी स्विमिंग सिखा रहा हूँ मैंने।
4: ओ अच्छा।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो और मैं हूं आपके साथ आरजे रवली. तो बात चल रही है समर हॉलीडेज़ की, देन वर्सेस नाउ की. तो सोशल लाइफ की अगर हम बात करें, अर्लियर जो है फ्रेंडशिप जो है वो मोस्टली हमारे नेबरहुड बेस्ड थे और फेस टू फेस हम जाते थे, है ना. स्कूल फ्रेंड्स के साथ भी मिलना हमारा उतना नहीं हो पाता था क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ खत्म, मतलब स्कूल दोस्तों के साथ, फिर जब हमारा स्कूल का वेकेशन ख़त्म होता था तभी उनसे मुलाकात होती थी. और फिर पूरा वक्त समर वेकेशन पर हम हमारे नेबरहुड बच्चों के साथ, उन्हीं के साथ हमारा मैक्सिमम वक्त जो है बीतता था. मगर अब चेंज देखे तो सोशल इंटरेक्शन काफी बढ़ गया है, हाइब्रिड हो चुका है ना. मतलब ऑफलाइन भी आपको फ्रेंड्स है, ऑनलाइन भी आप अपने यू नो क्लासमेट्स के साथ, वो कहीं पे भी हो उनके साथ आप बात कर सकते हो, चैट कर सकते हैं. आजकल के बच्चे अपने दोस्तों के साथ चैट कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स के फोन के साथ या अपने फोन के साथ, क्योंकि आजकल फोन्स में भी यू नो होमवर्क भेजा जा रहा है, असाइनमेंट्स भेजा जा रहा है. सो ये उनके लिए कुछ मतलब एक मीडियम बन चुका है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक कनेक्शन बनाए रख सकते थे ड्यूरिंग इवन समर हॉलीडेज. मगर अपने टाइम पे तब उतना ये अवेलेबल नहीं था, तो हम उनके साथ बात करना या मिलना जो भी हमने किया हो समर वेकेशन पे, तो उनके साथ वो सब कुछ हम शेयर तभी कर पाते थे जब हमारा स्कूल का फर्स्ट डे होता था. आई थिंक वो एंटिसिपेशन ज़्यादा होता था फर्स्ट डे का, एटलीस्ट कि स्कूल रीओपन हो रहा है तो हम अपने दोस्तों से मिलेंगे और जो भी हमने किया है समर वेकेशन पे उनके साथ हम जो है शेयर कर सकते हैं, है ना. तो बहुत सारी चेंजेस आए. आई थिंक उस टाइम का अपना एक स्पेशलिटी था और अब इतना एडवांस हो चुका है, कुछ चेंजेस आए हैं. तो आई थिंक सभी का उस टाइम का और इस टाइम का जो भी चेंजेस आए, आई थिंक टाइम के साथ आगे बढ़ना ही शायद हमें ज़िंदगी सिखाती है. तो कमिंग अप नेक्स्ट सॉन्ग इज़ फूलों के रंग से, सॉन्ग बाय किशोर कुमार. एंजॉय दिस ट्रैक.

0: FM Rainbow 101.9.
1: All right, दोस्तों, तो स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 1:55:38 इन द स्टूडियो क्लॉक, मतलब वक्त का इशारा हो चुका है कि आपसे मैं इजाजत लूं. तो आपसे मुलाकात होगी फिर से अगले शो में. तब तक के लिए सुनते रहिए FM Rainbow 101.9.

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे

0: चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: रेनबो 101.9।
1: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: FM Rainbow 101.9।

0: ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
2: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: FM Rainbow 101.9

0: 101.9।
1: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: FM Rainbow 101.9।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस स्टूडियो की घड़ी में 9:30 और 30 सेकेंड हो चुके हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग। सामईन, आज उर्दू प्रोग्राम नए रंग में आप समाप्त कर सकेंगे हरफ ताबिंदा। तहरीर व पेशकश होगी मोहतरमा फ़हमीदा फहमोश की। मत सहल हमें जानो सिलसिले के तहत आप समाप्त कर सकेंगे हैदराबादी उर्दू का समाजी व लिसानी मुताला। तहरीर और पेशकश होगी डॉक्टर रज़िया बेगम की। इसके बाद आप समाप्त कर सकेंगे गीत सुरीले गाते जा प्रोग्राम के तहत चंद फिल्मी नगमे, और साथ में हम बात करेंगे उस्ताद की अहमियत, और आखिर में पयाम शब से आज की इस उर्दू महफिल का इख्तिताम होगा। लीजिए समाप्त कीजिए आगाज पर हरफ़

0: यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर आप समाप्त कर रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। आगाज़ पर समाप्त कीजिए हरफ़ ताबिंदा, तहरीर और पेशकश है मोहतरमा फ़हमिदा फ़हमोश की।
1: दूरंदेशी का मतलब है मुस्तकबिल के हालात का पहले से अंदाज़ा लगाना और उनके मुताबिक अपनी हिकमत अमली तैयार करना। ये वो ज़हनी सिफत है जो इंसान को महज हाल में जीने के बजाय मुस्तकबिल के मुमकिना नताइज पर नज़र रखने के काबिल बनाती है। एक दूरंदेश इंसान वक्त आने से पहले ही खतरात को भांप लेता है और मवाक़े का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहता है। कामयाब और नाकाम इंसान के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क दूरंदेशी का होता है। जिस तरह एक शतरंज का माहिर खिलाड़ी अपनी एक चाल चलने से पहले अगली 10 चालों के बारे में सोचता है, ठीक उसी तरह जिंदगी में भी वही शख्स कामयाब होता है जो दूर की सोच रखता हो। दूरंदेशी इंसान को उजलत में किए गए फैसलों और उनके पछतावे से बचाती है। अगर हमको मालूम हो कि आने वाले वक्त में कोई बहरान आ सकता है तो हम उसकी पेशबंदी पहले से ही कर लेते हैं। तारीख गवाह है कि वही कौमें और अफराद दुनिया पर गालिब आए जिन्होंने दूरंदेशी से काम लिया। अजीम लीडर हमेशा वो होते हैं जो अवाम को वो दिखाते हैं जो अभी वजूद में नहीं आया होता हो। दूरंदेशी इंसान को मुस्तैद बनाती है, यानी वो हालात के पीछे नहीं भागता बल्कि हालात को अपने काबू में रखता है। दूरंदेशी की अमली मिसाल की अगर हम बात करें तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इसलिए कामयाब हुई कि उन्होंने 10 साल पहले ही देख लिया था कि मुस्तकबिल मोबाइल और इंटरनेट का है। जो कंपनियां दूरंदेशी से काम ना ले सकी वो वक्त की दौड़ में पीछे रह गई। दूरंदेशी के कई फवायद है, जैसे कि एक दूरंदेश इंसान मुस्तकबिल के लिए पहले से तैयारी रखता है, इसलिए अचानक आने वाली तब्दीलियों से घबराता नहीं और ज़हनी तौर पर पुरसकून रहता है। दूरंदेशी हमें फजूल कामों और गलत सरमायाकारी से रोकती है जिससे हमारा कीमती वक्त और पैसा ज़ाये होने से बच जाता है। हमें अपने अंदर दूरंदेशी पैदा करने के लिए हर काम शुरू करने से पहले खुद से सवाल करना होगा कि इस काम का नतीजा 1 साल या 5 साल बाद क्या होगा। अगर आपको लगता है कि मुस्तकबिल में कोई रुकावट आ सकती है तो उससे निमटने के लिए एक प्लान बी भी तैयार रखें। अगर हालात आपकी तवक्के के खिलाफ जाएं तो आपके पास एक मुतबादिल रास्ता भी होना चाहिए, उसे काउंटर स्ट्रेटजी कहते हैं। जल्दबाजी और जज्बात में किए गए फैसले

आकर बस जाते हैं तो वो अपने साथ अपनी जबान भी ले आते हैं। इन जबानों के अलावा अरबी और फारसी के असरात भी हैदराबादी उर्दू में देखे जाते हैं। 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश 2 आज़ाद सूबों में मुनक़िस्म हो गया। क़ब्ल अज़ीं एक ही सूबे की सूरत में यहाँ दोनों सूबों के लोग मिलजुल कर रहते थे। आंध्र प्रदेश के जो उर्दू बोलने वाले हैं यहाँ बसते हैं, इनकी उर्दू और हैदराबादी उर्दू में भी खासा फ़र्क देखा गया है। ये फ़र्क न सिर्फ लबो लहजे बल्कि जुमलों की साख्त की सतह पर भी नज़र आता है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और सरकारी इलाकों से आने वाले बाशिंदों और तेलंगाना और ख़ास तौर पर हैदराबादियों की उर्दू में बहुत फ़र्क पाया जाता है। इसमें भी सरकारी इलाके और रायलसीमा के इलाके के लोगों की ज़बान में फ़र्क होता है। ये फ़र्क उस वक्त ज़्यादा नुमायाँ होता है जब ये लोग हैदराबादी उर्दू में अपने मुद्दुआ का इजहार करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर तेलंगाना और आंध्रा के अल्फाज में फ़र्क देखिए। तेलंगाना में कहते हैं रह रहे थे, रह रहे थे, वहीं आंध्रा में कहते हैं रहते रहती। मेकू मिंजे, चिड़ जाना, गुस्सा हो जातिया, सुबह सुबह, सुबो। अंग्रेजी जबान का असर आलमगीर सूरत इख्तियार कर चुका है। इसके असर से कदीम और क्लासिकी जबानें तक नहीं बच सकी। उर्दू पर भी इसका खासा असर पड़ा है। हैदराबादी उर्दू भी इससे मुस्तशना नहीं है। पिछले 20-30 बरसों से हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मरकज बनता जा रहा है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई कंपनी या इंडस्ट्री खुलती है जिसमें काम करने वाले अमूमन हैदराबादी अंग्रेजी के तालीम याफ्ता नौजवान होते हैं। अलावा अजीं कंप्यूटर की तालीम और इंटरनेट के इस्तेमाल की कसरत की वजह से अंग्रेजी अल्फाज, फ़िक्रों और जुमलों का इस्तेमाल बढ़ गया है। हमारी तहकीक से पता चला है कि हैदराबाद को 3 इलाकों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो इलाका जहां आज भी कदीम हैदराबादी उर्दू अपनी असली सूरत में मौजूद है। दूसरा इलाका वो है जहां कदीम हैदराबादी आकर बस गए हैं, जो हैदराबादी उर्दू अंग्रेज़ी के असर से बोलते हैं। और तीसरा इलाका वो है जहां सिर्फ उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी से मिली जुली ज़बान बोली जाती है। शहर हैदराबाद के इन 3 इलाकों में 3 तरह की ज़बानें बोली और समझी जाती हैं। ताहम इन ज़बानों पर हैदराबादी उर्दू का असर नुमाया है। किसी भी ज़बान के लिए लोकगीतों का सरमाया बड़ी अहमियत का हामिल होता है। शहर हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ के खरियों में जो लोकगीत गाए जाते हैं उन पर हैदराबादी उर्दू का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। किसी ज़माने में हैदराबाद में शादी ब्याह, छिल्ला छट्टी और दूसरी तकारीब में ढोलक के गीत गाए जाते थे और ये रोज़ का मामूल था। इन गीतों की ख़ास बात ये थी कि ये गीत हैदराबादी उर्दू में होते थे और हैदराबादी लब्बो लहजे के साथ गाए जाते थे। आज भी कहीं कहीं तकारीब में गीत सुनने को मिल जाते हैं। ताहम अब ज़माने का मजाक बदल चुका है। आज लोग अंग्रेज़ी मौसीकी को पसंद करने लग गए हैं और तकारीब में DJ वगैरह को तरजीह दी जा रही है। अलबत्ता हैदराबाद से मुतसिल खड़ियों में आज भी ढोलक के गीत गाए जाते हैं। हैदराबादी उर्दू का लिसानी मुताला अपनी जगह पर बड़ी अहमियत का हामिल है। इस मुताले से उर्दू का एक इलाकाई रूप सामने आता है। हम देखते हैं कि हैदराबादी उर्दू सौतियाती, सरफियाती, नहवियाती और मानियाती सतहों पर मेयारी उर्दू से काफ़ी मुख्तलिफ है। अलावा अजीं हैदराबादी उर्दू के मुहावरे, ज़रबुल अमसाल और रोज़मर्रा भी खदरे मुख्तलिफ हैं। नीज़ हैदराबादी उर्दू पर दूसरी ज़बानों मसलन मरहटी, तेलुगू, अरबी, फ़ारसी और संस्कृत वगैरह के असरात का मुताला भी नए नतायज सामने लाता है। जहाँ तक हैदराबादी उर्दू के सौतियाती मुताले का ताल्लुक है, इसमें तख़फ़ीफ़ सौत, हज़फ़ सौत, इजाफ़ सौत, तब्दीली सौत के अलावा अनफी आवाज़ों का इस्तेमाल, हरूफ में तकदीम व ताखिर का रुझान, मुसवितों और मुसम्मितों में एक दूसरे के साथ तब्दीली, अदम हकारियत, इजाफ़ हकारियत, एराब का इजाफा और मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल देखा गया है। इस मुताले से हैदराबादी उर्दू की इनफरादियत सामने आती है। तख़फ़ीफ़ सौत से मुराद अल्फाज में आवाज़ों को खफीफ यानी छोटी करके इस्तेमाल करना। तख़फ़ीफ़ सौत की मिसालें कुछ इस तरह

से हैं। मांगना मंगना, मिठाई मिठाई, ढाई ढई। हजफ़ सौत की मिसालें कुछ इस तरह हैं: फ़ायदा फ़ायदा, खशखाश खशखश, लड़ाई लड़ई। इजाफ़ सौत की मिसालें देखिए: बचपन बचपना, कील कीला, बीच बींज। तब्दीली सौत: कटाई कटवई, यखनी अखनी, भटकना फटकना। अनफी सौतिये वो होते हैं जिनकी अदायगी में आवाज़ मुंह के बजाय नाक की खला से बाहर आती है। अनफी सौतों की मिसालें कुछ इस तरह है: चावल चावल, सौतेली सौतेली, सोचना सोचना। तकदीम व ताखीर से मुराद अल्फाज में हरूफ की तर्तीब को आगे से पीछे या पीछे से आगे करना, जैसे पत्थर पत्थर, नन्हा नन्ना, टांगना टंगाना। अदम हकारियत से मुराद तीनों है, गोल्हा और दो चश्मी है को हजफ करके अल्फाज अदा किया जाता है। मुल्ला मुल्ला, सहेली सहेली, तुम्हारा तुम्हारा। इजाफ़े हकारियत में है की आवाज़ का इजाफा किया जाता है, यानी ताली थाली, उल्टा उल्टा, मकड़ी मखड़ी। मुशद्दद अल्फाज में अल्फाज को मुशद्दद करके इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ इस तरह हैं: मीठा मिठा, गली गली, रिस्क रिज़्क़। किसी ज़बान का सरफियाती मुताला इस ज़बान की इन्फ़िरादियत को मुतय्यन करने में अहम रोल अदा करता है। सरफियात लिसानियात की वो शाख है जिसमें किसी ज़बान की छोटी से छोटी बामानी इकाई का मुताला किया जाता है। हैदराबादी उर्दू के सरफियाती मुताले से इसकी इन्फ़िरादियत का इजहार होता है। हैदराबादी उर्दू के अस्मा ज़मायर सिफात और अफ़आल वगैरह मेयारी उर्दू से करीब होने के बावजूद आप अपनी शिनाख्त रखते हैं। जहाँ तक हैदराबादी उर्दू के नहवियाती मुताले का ताल्लुक है, इससे भी बात मुहक्किक हो जाती है कि हैदराबादी उर्दू मेयारी उर्दू से कहीं कहीं बहुत अलग हो जाती है। अलल खुसूस ज़मायर मौसूला की जगह ज़मायर इस्तेफ़हाम का इस्तेमाल, जो द्राविड़ी ज़बानों की खसूसियत है, हैदराबादी उर्दू में जूं का तूं पाया जाता है। जुमलों में मुब्तदा और ख़बर की तकदीम व ताखीर से भी हैदराबादी उर्दू मुख्तलिफ हो जाती है। जुमलों में मखसूस हैदराबादी फ़िक्रों की शमूलियत से भी यहाँ की उर्दू में नहवियाती सतह पर तब्दीली वाक़ होती है। मानियाती सतह पर हैदराबादी उर्दू में बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जो अपने लगवी या मेयारी मानों से हटकर इस्तेमाल होते हैं। दूसरे ज़बानों की तरह यहाँ की उर्दू में भी अल्फाज अपने मखसूस व मुतय्यन मानों में इस्तेमाल होते हैं जो आम मानों से हटकर होते हैं। मानी में वसत का पैदा होना ज़बान के ज़िंदा होने की दलील है। ऐसे अल्फाज जो मेयारी उर्दू में मौजूद हैं लेकिन उनके मानी में कमी या इजाफा हुआ है, इनका शुमार मानियात के इल्म के तहत किया जा सकता है। यहाँ अल्फाज के हकीकी मानों के अलावा हैदराबाद में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ मानों को जुमलों की शक्ल में पेश किया जा रहा है। जैसे मकान का इस्तेमाल किसी घर के लिए होता है जिसमें चार दीवारें और छत होती है, लेकिन हैदराबाद में मकान का लफ्ज दीगर मानों में भी इस्तेमाल होता है। मसलन मकान, जहाँ मुहर्रम के पंजे रखे जाते हैं, इस जगह को भी मकान कहा जाता है। घर, खबर के लिए खोदी जाने वाली जमीन को भी घर कहा जाता है। खुशकी, रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सूखे आटे को भी खुशकी कहते हैं। हैदराबादी उर्दू के लिसानी मुताले का एक हिस्सा वो अल्फाज और मुहावरे भी हैं जो सिवाय शहर हैदराबाद या उसके मुजाफात के कहीं और नहीं बोले जाते। मुहावरा एक ऐसे फिक्रे को कहते हैं जिसमें एक तसव्वुर और एक मजदर हो और इसके मजाजी मानी मुराद लिए जाएं। यहाँ हैदराबाद में इस्तेमाल किए जाने वाले मुहावरों की मिसालें देखिए: उंगली दिए तो पौंचा पकड़ना, पेट में मुंडी डालना, जहाँ सुई नहीं जाती वहाँ सब्बल घुसाना वगैरह। ज़र्बुल मिसल से मुराद वो फिक्रा या जुमला है जिसमें मजदर ना हो बल्कि ये एक कहावत मालूम हो। मिसाल के तौर पर, नए मामू से नकटे मामू बेहतर, होठ भी अपने दाद भी अपने।
अव्वा भी गया, बुआ भी गया।

0: वगैरह। इसके अलावा कुछ रोजमर्रे इस तरह से हैं, चल चल पे दल दल, वक़्त ना सख़त, कर मेहनत खा नेमत, एक मार दो टुकड़े, ऐता पुरोता, अपने में की बात, कुछ भी नहीं क्या भी नहीं वगैरह। इसके अलावा कुछ मखसूस हैदराबादी अल्फाज हैं जो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में ही बोले जाते हैं, मिसाल के तौर पर हाओ, नक्को, कईकू, अपन, गत, बौरान, अला बला, डुम्मे मारना, गलगल करना, हेटे चाले, हल हैबत, घपला, कौरे भौरे वगैरह। अलगर्स हैदराबादी उर्दू के इस समाजी और लिसानी मुताले से इसके मुस्तकबिल का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। हैदराबादी उर्दू की पहचान इसका मीठा लबो लहजा है जो अब भी अपना जादू जगाता है। अलबत्ता आज़ादी के बाद जो सियासी, समाजी, तालीमी और माशी तब्दीलियां आईं, उनकी वजह से बोली की सतह पर काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं और तब्दीली का ये सिलसिला जारी है। इसलिए कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल में हैदराबादी उर्दू की जो शक्ल उभरेगी वो अंग्रेज़ी नुमा होगी जो हैदराबादी लबो लहजे में अदा की जाएगी।
1: यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस स्टूडियो सी घड़ी में 9:51 हो चुके हैं। अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम मत सहिल हमें जानो सिलसिले के तहत। आप समाप्त कर रहे थे हैदराबादी उर्दू का समाजी व लिसानी मुताला। तहरीर और पेशकश थी डॉक्टर रजिया बेगम की। लीजिए समाप्त कीजिए अगला प्रोग्राम जो कि फिल्मी नगमों पर मबनी है, गीत सुरेले गाते जा, और साथ में हम बात करेंगे उस्ताद की अहमियत की। लीजिए समझ कीजिए ये नगमा।
0: हैदराबादी उर्दू।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरैले गाते जा। आप समाप्त कर रहे थे ये नगमा, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। सामईन, उस्ताद वो चिराग है जो रोशनी बिखेरता है, उस्ताद वो चिराग है जो रोशनी बिखेरता है, अंधेरों में भी इल्म का रास्ता दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी में तालीम की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, और इस तालीम को आम करने में उस्ताद का किरदार कलीदी होता है। उस्ताद वो हस्ती है जो तालिब इल्म को जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म की रोशनी से मुनव्वर करती है। लीजिए समाप्त कीजिए नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियो सीगड़ी में 10:18 हो चुके हैं और अब आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। और साथ में हम बात कर रहे हैं उस्ताद की अहमियत। समीन उस्ताद ही सिखाता है जीने का हुनर हमें, उस्ताद ही सिखाता है जीने का हुनर हमें, गिरना संभलना फिर पढ़ने का सफ़र हमें। जी हाँ सामईन, उस्ताद तुलबा को माशरे का एक बाशऊर और ज़िम्मेदार शहरी बनने में मददगार साबित होते हैं। एक अच्छा उस्ताद अपने शागिर्दों में खुद एतमादी पैदा करता है और इन्हें ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करना सिखाता है। लीजिए सामईन, समाप्त कीजिए एक नगमा अमित कुमार और साथियों की आवाज़ में।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। इस स्टूडियो सी घड़ी में 10:23 हो चुके हैं और आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत चुरेले गाते जाओ। और साथ में हम बात कर रहे थे उस्ताद की। जी हाँ, वो लफ्ज़ों का जादूगर, वो इल्म का अमीन, वो लफ्ज़ों का जादूगर, वो इल्म का अमीन, अंधेरों में जैसे कोई रोशन ज़मीन। जी हाँ दोस्तों, उस्ताद एक माशरे की तालीम में बुनियादी किरदार अदा करता है। उस्ताद न सिर्फ इल्म का ज़रिया होता है बल्कि अखलाक, किरदार और शऊर का भी मामार होता है। एक अच्छा उस्ताद शागिर्दों पर गहरे असरात मुरतब करता है और इन्हें एक कामयाब इंसान बनने में मदद करता है। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा।

0: दस बजकर 30 मिनट हो चुके हैं। अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं उस्ताद की। वो हाथ जो थामे तो रास्ता मिल जाए, वो हाथ जो थामे तो रास्ता मिल जाए, वो साथ जो दे दे तो हौसला बढ़ जाए। जी हाँ सामईन, उस्ताद का काम सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं होता, बल्कि वो अपने शागिर्दों को अखलाकियात, नज़्म ज़ब्त और ज़िंदगी के गुजारने का उसूल भी सिखाता है। एक बेहतरीन उस्ताद अपने शागिर्दों के अंदर खुद एतमादी पैदा करता है और इन्हें सच्चाई, ईमानदारी और मोहब्बत का दर्स देता है। वो ना सिर्फ सबक पढ़ाता है बल्कि अपने किरदार और अमल से भी मिसाल कायम करता है। लीजिए समाप्त कीजिए यह नगमा कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में।
1: इजाजत है।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामईन अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं उस्ताद की। जी हाँ दोस्तों, वो सिखाए सब्र भी, वो सिखाए सब्र भी, वो दे हौसला भी। वो सिखाए सब्र भी, वो दे हौसला भी, जिंदगी के हर मोड़ पर दे मशवरा भी। सामिन, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बहुत मुकद्दस होता है। ये रिश्ता एहतराम, एतमाद और मोहब्बत पर कायम होता है। एक शागिर्द के लिए ज़रूरी है कि वो अपने उस्ताद की इज्जत करे, क्योंकि उस्ताद की इज्जत में ही इल्म की बरकत है। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा आशा और लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। इस स्टूडियो इसी घड़ी में 10:44 हो चुके हैं। आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं उस्ताद की। सामईन, वो सिर्फ किताबों की बातें नहीं करता, वो सिर्फ किताबों की बातें नहीं करता, जिंदगी के राजों को भी आसान करता है। जी हाँ सामईन, जो शागिर्द अपने उस्ताद का अदब करते हैं वो ज़िंदगी में भी कामयाब होते हैं। इस तरह उस्ताद पर भी लाजिम है कि वो अपने शागिर्दों के साथ नरमी और इंसाफ के साथ पेश आए और इनकी सलाहियतों को निखारने की कोशिश करे। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा आशा और अमित कुमार की आवाज़ों में।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 MHz पर आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं उस्ताद की। जी हाँ दोस्तों, उस्ताद वो दरिया है इल्म व वफा का, उस्ताद वो दरिया है इल्म व वफा का, हर खतरा जिसका पैगाम है बखा का। आखिर में कहा जा सकता है कि एक उस्ताद एक कौम का मामार होता है। वो अपने इल्म और तरबियत के जरिए न सिर्फ अफराद बल्कि पूरे माशरे को संवारता है। हमें चाहिए कि हम अपने उस्ताद की इज्जत करें, इनकी कदर करें और इनकी तालीमात पर अमल करें, ताकि हम एक बेहतरीन इंसान और एक कामयाब माशरा तश्कील दे सके। सामिन समात कीजिए, ये नगमा मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामिन अभी आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा, और हम बात कर रहे थे उस्ताद के मुतालिक चंद बातें। सामिन, उर्दू प्रोग्राम नए रंग में कल आप समाप्त कर सकेंगे हर फिताबिंदा तहरीर व पेशकशों की फहमिदा फहमोश की, और

वो कांटा जो चुप कर टूट जाए, मोहब्बत की बस इतनी दास्तान है। मोहब्बत हमेशा खुशी नहीं देती, कभी ये दिल में ऐसा दर्द छोड़ जाती है जो देर तक महसूस होता है। हर कशिश ये लगाओ मोहब्बत नहीं होता, अगर रिश्ता कमज़ोर हो तो वो जल्द टूट जाता है और तकलीफ दे जाता है। जिस तरह कांटा चुपकर जख्मी करता है, वैसे ही गलत शख्स से मोहब्बत इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। इसीलिए ताल्लुकात में एहतियात ज़रूरी है। सच्ची मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। इसे निभाने के लिए संजीदगी और इखलास ज़रूरी है। मोहब्बत अगर सच्ची और मजबूत ना हो तो कांटे की तरह चुप कर दिल को जख्मी करके ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ताल्लुकात में समझदारी और एहतियात बहुत ज़रूरी है।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। अभी आप समाप्त कर रहे थे पयाम शब। तहरीर और पेशकश थी नदीम अख्तर जैदी की, स्टूडियोज की।
1: FM रेनबो 101.9
0: स्टूडियो सी घड़ी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हात में आप समाप्त कर सकेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में, जो कि आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का

0: दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। टीवीके पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही ये सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. The Prime Minister said, to keep the shared heritage alive, India is restoring the My Son and Nan Tao temples of Vietnam's ancient Champa civilization. President Tho Lam said, Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India, as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. Briefing the media after bilateral talks between Prime Minister Modi and the Vietnamese President, Secretary East in the Ministry of External Affairs P. Kumaran said both countries agreed to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. Acknowledging the advancements made by the Indian pharmaceutical industry, the two sides agreed to explore ways for the potential participation of Indian companies in the procurement of medicines for Vietnamese public healthcare facilities from 2027. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bouva in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jaishankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations today will further deepen and diversify India-Suriname ties. In his statement to the press after the Joint Commission meeting, Dr. Jaishankar said the talks also touched on global multilateral issues.

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

बिल्कुल, और हम भी हैं आप ही के। जी हाँ, गीत मेरे मनमीत लेकर हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये गीत आपने सुना फिल्म बॉम्बे टू गोवा से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, आरडी बर्मन का संगीत, और इस गीत को लिखा राजेंद्र कृष्णन ने।

तो दोस्तों, गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही। और राखी बिल्कुल आ चुकी है स्टूडियो में और निशिगंधा लेकर आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल बने रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। और अब आप अपने दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र, लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू

0: राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
1: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
2: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। हैदराबाद के लिए हैंड्रिक क्लासेन ने 69 और ईशान किशन ने 55 रन की पारियां खेली जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स के लिए कूपर कोनली ने 107 रन की पारी खेली। पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. President Tho Lam said, Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tho Lam at Rashtrapati Bhavan last evening. She also hosted a banquet in the honour of the visiting dignitary. The president said, The elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation, but also contribute to peace and prosperity in the region. She said that India and Vietnam share a deep friendship rooted in historical, civilizational and cultural ties. Meanwhile, Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju also met Minister of Ethnic and Religious Affairs of Vietnam Nguyen Dinh Khang at Parliament House in New Delhi yesterday. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal has reviewed the progress of the National Maritime Heritage Complex in New Delhi. NMHC is under construction at Lothal, Gujarat. It is a landmark initiative to showcase India's rich maritime legacy and civilizational connect with the seas. Mr. Sonowal has set July this year as the target for the completion of phase one of the project. During the meeting yesterday, the Union Minister stressed on the need for collaboration

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

अलग अलग फिल्म से आपने गीत सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। बूंदों की हल्की थपकियों से सजी ये भीखी भीखी रात, आधी रात का ये सन्नाटा जैसे कुछ कहने को बेताब है। हवा में खुली मिट्टी की खुशबू दिल के किसी कोने को छू जाती है, और ऐसे में अगर साथ हो कुछ सुरों का तो हर एहसास और भी गहरा हो जाता है। इस भीगे मौसम में, इस आधी रात के खामोश लम्हों में खुद को खो देते हैं कुछ सुरीले गीतों के साथ, जहां हर धुन एक कहानी कहती है, हर लफ्ज किसी की याद को जगा देता है।

दर्पण फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कभी ये गीत हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं तो कभी किसी अधूरी बात, किसी पुराने ख्वाब की याद दिला जाते हैं। तो बस इस पल को थाम लीजिए, बारिश की इन बूंदों के संग दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए और इन सुरीले गीतों में डूब जाइए, क्योंकि ऐसी रातें बार बार नहीं आती।

ये इश्क नहीं आसान फिल्म से आपने ये गीत सुना मनहर की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम यहाँ पर आपको करेक्ट मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगी, ये गीत अनवर ने गाया है और ये गीत है ये इश्क नहीं आसान फिल्म से।

वक्त हुआ है 12:30 और ठीक 15 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दुनिया फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इसे लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

बाबू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। ये वो वक्त है जब गीत सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। हर धुन बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। भीगा सा मौसम और इसके बीच चलती एक नर्म सी मेलोडी, जैसे रात खुद गुनगुना रही हो।

हर जाई फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। गीत चलते रहते हैं एक के बाद एक, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के, फिर भी हर धुन जानी पहचानी सी लगती है। कभी लगता है जैसे ये रात किसी का इंतजार कर रही है, और कभी यूं लगता है कि इसे किसी का इंतजार ही नहीं है, ये अपने आप में पूरी है। तो आज इस आधी रात को किसी कहानी में मत बंधिए, बारिश की इस हल्की हल्की बूंदों में, इनकी लय में और इन सुरीले गीतों के साथ जो बिना वजह भी दिल को छू लेते हैं, इनके साथ बहते चले जाइए।

रॉकी फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। आधी रात का ये ठहरा हुआ लम्हा, जहां हर चीज जैसे अपनी रफ्तार भूल चुकी है, खामोशी इतनी गहरी है कि दिल की हल्की सी धड़कन भी सुनाई देती है, और उसी खामोशी में कहीं धीमे से बजते हैं कुछ सुरीले गीत। ये गीत शोर नहीं करते, बस चुपचाप दिल के करीब बैठ जाते हैं, जैसे कोई बिना बोले साथ निभा रहा हो।

प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। जगजीत सिंह ने इसका गीत संगीत दिया और इस गीत को लिखा इंदीवर ने। वक्त हुआ है 12:58 और ठीक 10 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों पर विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति को लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने

0: का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर दो दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral trade in a balanced and mutually beneficial manner. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tho Lam at Rashtrapati Bhavan last evening. She also hosted a banquet in the honor of the visiting dignitary. The president said the elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation but also contribute to peace and prosperity in the region. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bua in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

शबाब फिल्म का गीत आपने सुना, इसे लिखा शकील बदायूनी ने और संगीत दिया नौशाद ने। जोगन बन जाऊंगी पिया तोरे कारण, जैसे बोल सुनते ही दिल अपने आप एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, एक एहसास है, समर्पण का, मोहब्बत की गहराई का। इसमें जो भाव है ना, वो बहुत मासूम और सच्चा है कि किसी के प्यार में इंसान अपनी पूरी दुनिया बदल देने को भी तैयार हो जाए। जोगन बनना यहाँ त्याग और भक्ति का प्रतीक है, जैसे प्यार कोई पूजा बन गया हो।

अनारकली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, इस एक लाइन में ही पूरी जिंदगी की फिलॉसफी छुपी है कि असली जीना वही है जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी अपने के लिए जीने लगे। प्यार में खुद को खो देना यहां हार नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास बन जाता है।

अंदाज फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे मजरूह ने लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। उठाए जा उनके सितम और जिए जा। इस पंक्ति में जो दर्द है वो बहुत गहरा है। प्यार में मिलने वाले सितम यानी तकलीफों को कोई भी इंसान चुपचाप सहता जाता है, क्योंकि उसके लिए वो मोहब्बत ही उसकी जिंदगी बन चुकी होती है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि उस दौर के गीतों में दिखने वाला बे इंतहा समर्पण है, जहां मोहब्बत में शिकायत कम और सहने की ताकत ज्यादा होती थी।

मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से आपने ये गीत सुना। रफ़ी और लता की आवाज़ में शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी परमन ने।

हुआ है 1:28 और ठीक 6 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

देवदास फिल्म का गाना आपने सुना, मुबारक बेगम की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। वो ना आएंगे पलटकर, इस पंक्ति में जो एहसास है वो बहुत गहरा है। एक ऐसी सच्चाई जिसे दिल मानना नहीं चाहता कि कुछ लोग कुछ रिश्ते एक बार चले जाएं तो फिर लौटकर नहीं आते। लेकिन पुराने गीतों की खूबसूरती यही है, वो सिर्फ दर्द नहीं देते बल्कि उस दर्द को एक सुकून भरी आवाज़ भी दे देते हैं जिससे दिल हल्का हो जाता है।

बैजू बाबरा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। मोहे भूल गए सांवरिया, एक ऐसी विरह व्यथा जहां प्रेमी की याद ही सब कुछ बन जाती है, और जब वही सांवरिया भूल जाए तो दिल जैसे खाली हो जाता है। मोहे भूल गए सिर्फ शिकायत नहीं है, ये एक बेबस पुकार है जिसमें इंतजार है, तड़प है और एक मासूम सी उम्मीद भी कि शायद वो लौट आए।

आग फिल्म का गाना आपने सुना, इसे गाया मुकेश ने और लिखा बेहजाद लखनवी ने और संगीत दिया राम गांगुली ने। इस गीत में कितनी गहराई छुपी हुई है, जैसे इंसान जी तो रहा है लेकिन भीतर से कहीं खो चुका है। ये गीत हमें उस एहसास से जोड़ता है जहां दर्द इतना अपना हो जाता है कि वो अलग से महसूस भी नहीं होता, बस जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। पुराने नगमों की यही खासियत है, वो हमारे अनकहे जज्बातों को आवाज दे देते हैं और हम बस चुपचाप उन्हें सुनते रहते हैं।

बरसात की रात फिल्म का ये गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। कभी कभी कुछ चेहरे कुछ मुस्कानें हमें यूं ही नहीं छू जाती, शायद वो किसी पुराने ख्वाब का हिस्सा होती हैं या दिल के किसी कोने में पहले से बसी हुई कहानी।

ताजमहल फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। वाकई तस्वीर चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो उस हंसी की गर्माहट, उस आवाज़ की मिठास और उस साथ के सुकून को कभी कैद नहीं कर सकती।

संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का ये गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एस एन त्रिपाठी ने। कभी कभी यादें भी कितनी अजीब होती हैं ना कोई आवाज देती हैं ना कोई दस्तक, बस चुपचाप दिल में उतर जाती हैं।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। जब प्यार किया तो डरना क्या, यानी अगर दिल से मोहब्बत की है तो फिर किसी का डर कैसा, न समाज का, न हालात का, न अंजाम का।

वक्त हुआ है 1:58 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ।

वक्त हुआ है 1:58 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पादन विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC की प्रगति की समीक्षा की। NMHC का निर्माण गुजरात के लोथल में चल रहा है। ये भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और समुद्रों के साथ उसके सभ्यागत जुड़ाव को प्रदर्शित करने की एक ऐतिहासिक पहल है। श्री सोनोवाल ने इस परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए इस साल जुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के पास गल्फ ऑफ स्ट्रेट में स्थिति की भी समीक्षा की और भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा।

0: बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउबाज के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। इस घटना के संबंध में ईरानी अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments, and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral trade in a balanced and mutually beneficial manner. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bouva in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jayashankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations will further deepen and diversify India-Suriname ties. West Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's personal assistant Chandranath Rath has been shot dead in Dohariya area of Madhyam Gram. Eyewitnesses say bike-borne assailants followed his car and opened fire. Rath was rushed to a nearby hospital where he was declared brought dead. The driver was also injured in the attack. Senior BJP leaders, including Shubhendu Adhikari, reached the spot. Newly elected Barakpur MLA Kaustubh Bagchi has alleged that the murder was planned by Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. Our correspondent reports preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government. Union Minister for Port, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

दिल आखिर दिल है इस फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। अनिल मोहिले ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। जज्बात इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा है जो दिखते नहीं लेकिन हर पल महसूस होते हैं। हर एहसास की अपनी एक कहानी होती है, कभी मीठी कभी चुभती हुई, कभी अधूरी तो कभी पूरी होकर भी अधूरी सी।

खानदान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। खुशी छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, किसी अपने का साथ, एक पुराना गाना या अचानक मिली कोई अच्छी खबर, ये सब दिल को हल्का और चेहरे को रोशन कर देते हैं।

गोलमाल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। हर पल को जी लो, हर एहसास को महसूस कर लो, क्योंकि जो अभी है वही सबसे कीमती है। कभी ये पल खुशियों से भरा होगा, कभी थोड़ा सा उदास भी, पर हर पल अपनी एक कहानी छोड़ जाएगा।

सौदागर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

वक्त हुआ है 2:34 और ठीक 11 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

सवेरे वाली गाड़ी, लता मंगेशकर की आवाज में आपने गीत सुना। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वो दिन वापस जरूर लौटेंगे, ये एक यकीन है, एक उम्मीद जो दिल को थामे रखती है। हर गुजरा हुआ पल कहीं ना कहीं हमारे अंदर जिंदा रहता है।

जमीन आसमान, इस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। दिल देना कोई सौदा नहीं होता, ये तो जैसे अपनी दुनिया किसी और के हवाले कर देना है, और जब ये कदम घबराकर उठाया जाए तो उसमें मासूमियत भी होती है और सच्चाई भी।

आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। रात का अपना एक अलग ही जहां होता है, धीमा, गहरा और एहसासों से भरा। ये रातें कहानी कहती हैं, कभी मोहब्बत की तो कभी इंतजार की। वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 18 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि

0: अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करैकल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral trade in a balanced and mutually beneficial manner. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bova in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jayashankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations will further deepen and diversify India-Suriname ties. In West Bengal, in a shocking incident, Chandranath Rath, a close aide of BJP leader Suvendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram. According to reports, bike-borne attackers opened indiscriminate fire at his car in the Dhoria area. Chandranath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadev Behra, sustained multiple bullet injuries and has been shifted to a Kolkata hospital in critical condition. According to sources, 8 attackers on 4 motorcycles followed the car and ambushed it. Soon after the incident, several BJP leaders visited the hospital. Meanwhile, BJP leaders have blamed the Trinamool Congress and accused Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee of involvement. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. Our correspondent reports preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Vishwanath Arlekar and staked a claim to form the new government in the state. Meanwhile, Congress, having 5 MLAs, took the decision to support the TVK and met Vijay and offered the letter of support. In Keralam, discussions to form government is professing at Thiruvananthapuram.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ।

अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। रात सुहानी है, हवाओं में मीठी सी कहानी है, तेरे ख्यालों ने आज फिर दिल को चुपके से छुआ है, हर सितार जैसे बस तेरा ही नाम गुनगुना रहा है।

चांदनी भी शर्मा जाए जब तुम मेरे साथ हो, ये रात और भी हसीन हो जाए तेरे एहसास से, जैसे हर पल मैं बस प्यार ही प्यार बसता रहे तेरे साथ से।

तेरे प्यार का असर यूं ही हर सांस में बना रहे, तेरी हंसी मेरे हर ख्वाब की रोशनी बन जाए, बस तुझ में ही सिमट कर ये दिल सुकून पाता है।

दिल के दरवाजे आज जरा खुल जाने दो, इन हवाओं में मोहब्बत का रंग थोड़ा घुल जाने दो, शायद कोई अपना फिर से दस्तक दे जाए।

कुछ यादें होती हैं जो रात के सन्नाटे में और भी करीब आ जाती हैं। आज की ये महफिल उन्हीं एहसासों के नाम, जहां हर धड़कन में छुपा है किसी का नाम।

ओ मेरे महबूब, चांद और तारे आज गवाह बन गए तेरे मेरे इस खूबसूरत से रिश्ते की। ये रात भी मुस्कुरा उठी है, ये हवा भी कुछ कह रही है। दिल की हर धड़कन में अब सिर्फ तेरी ही सदा रह गई है।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूँगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद कल ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान करेगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशघम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्य ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने

और समय हो गया है 4:11 और 5 सेकेंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये समय है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म दूर का राही फिल्म से, प्यारा सा गीत किशोर कुमार और उनके साथियों की आवाज़ में।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म संगम से लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और मुकेश की आवाज में। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म मेरा साया से लता मंगेशकर की आवाज में संगीतकार मदन मोहन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म क्रांति से नितिन मुकेश की आवाज़। नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और प्रोग्राम है अरुणिमा। और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम अरुणिमा को, सुनते हैं अगला गीत फिल्म धरती से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार राजेंद्र किशन, संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत अवतार फिल्म से किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और उनके साथियों की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और इस गीत के संगीतकार हेमंत कुमार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और समय कह रहा है कि अनुमति ले ली जाए 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए आपसे ले रही हूँ इजाजत। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।
1: सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब है। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधि मंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वावधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकान स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया।

समय हो गया है 5:11 और 4 सेकेंड। समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और एक बार आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ, जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है हरिओम शरण ने।

जीवन हमें यही सिखाता है कि असली ताकत अपने अंदर होती है। सुख में साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, पर जो दुख में भी मुस्कुराना सिखा दे, वही आपके जीवन की असली जीत है।

हर नई सुबह एक नया सफर लेकर आती है। बीते कल को पीछे छोड़कर आज की भोर में अपने सपनों को फिर से जगाइए।